0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड मॉर्निंग। कुछ ईस्टर्न रीजन में ही बारिश हो सकती है आज। व्हाट्स द फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू द एनसीए, मैक्स टेम्परेचर्स आर 38 इन दुबई, अबू धाबी में 39, ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज ओवरनाइट, चांस ऑफ फॉग और मिस्ट टुमारो मॉर्निंग। देखिए, ऑटम इज ओनली ऑन पेपर, इट्स जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट राइट नाउ। 31 डिग्री सेल्सियस ह्यूमिडिटी एट 68% राइट नाउ, हाईज ऑफ 37, लोज ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Holidaymarket.ae. A staycation from just 250 dirhams? Yes, really! I found the deal. You just need to grab it. Visit holidaymarket.ae or call 800 Alfred.
1: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
2: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए. पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
3: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: It is 7:42 on the clock, and let's take a look. Sabse pehle at the usual suspects. 311-11 heading south, going towards Dubai from Sharjah. Dono jagahon par aapko milegi 8 se 10 minute ki der, lekin 21 minutes ka delay aaj. हाँ, ये आजकल मिस्ट्री नहीं है कि होगा कि नहीं, कितना होगा. दैट इज व्हाट द सस्पेंस इज. 21 मिनट्स डिले एट E88 एंड दिस इज हेडिंग ईस्ट गोइंग टुवर्ड्स सेफ जोन इन द डायरेक्शन ऑफ शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इसके चलते कुछ वेस्ट बाउंड ट्रैफिक भी आपको मिलने वाला है इन दैट इंडस्ट्रियल एरिया वाला जो रीजन है. देन E11 पर हेडिंग साउथ फ्रॉम अजमान इंडस्ट्रियल 2 यू विल फाइंड कंजेशन. So be careful in these areas also. There is airport road ka traffic badhna shuru ho gaya hai. Beirut Street, Damascus Street, Baghdad Street is also getting a bit busy. Then there is a Sheikh Zayed Road Trade Center roundabout, and 44 going towards Business Bay from Russell Core is busy as always. Maidan Street pe aaj traffic dikh raha hai, and

0: आप जानते हैं कि what is back on public demand.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Ethnic partner Bavri and Kora. Jewelry partner Meena Jewelers. Travel partner AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: सिर्फ काम मेहनत के बारे में सोचते हो या वेकेशन लेने की भी कभी आपकी आइडिया आता है दिमाग में? दिस इज द बेस्ट थिंग दैट इज गोना हैपन टू यू, आई एम टेलिंग यू, गारंटीड वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ योर लाइफ टाइम. दैट इज व्हाट वी प्रॉमिस यू, एन ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. हाउ डज दैट साउंड? सो इसके लिए क्या करना है आपको, बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम व्हाट्सएप करना है 0543091062 एंड वील प्ले अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. जस्ट एक वो होता है ना आजकल वाइब चेक, सो आई एम गोना डू अ वाइब चेक के हाउ मच डज जर्मनी की वाइब मैच विद योर्स, एंड अगर नहीं करते तो करा देंगे मैच, ऐसी भी क्या बात है. सो बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम, उसे व्हाट्सएप करते रहो दिन भर, पता नहीं कब नंबर लग जाए, यू माइट गेट वन स्टेप क्लोजर विनिंग दिस ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम टू जर्मनी विद टीम बिग. सो बिग चेक इन स्पेस योर नेम, व्हाट्सएप इट टू 0543091062.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 8:06।
1: Bollywood.

कॉर्पोरेट, अगर आप मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से मतलब काम पे जा जा के परेशान हो, सिर्फ काम करते हो, छुट्टी के बारे में नहीं सोच पाते हो, देन दिस इज द परफेक्ट ट्रिप फॉर यू, ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. दिस इज वेयर यू मेक फ्रेंडशिप्स दैट लास्ट यू फॉर अ लाइफ टाइम एंड यू गो टू सम amazing, amazing places that are on everybody's travel bucket list ka top, right? So, Germany jane ka mauka ye haath se nikal na jaye. Kya karna hai? Aapko big check-in space dekar apna naam type karna hai. Big check-in space, your name and WhatsApp it right now to 054-309-1062.

0: 105.2, the beat of Bollywood.
1: Holidaymarket.ae. Pack your bags. I found unbeatable holiday deals, staycations, visas, and much more. Your next escape could be closer than you think. Visit holidaymarket.ae.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1, and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अगर आपको बेस्ट पिज्जा की तलाश है, इट एंड्स विद पापा जॉन्स, एंड हियर इज अ चांस फॉर यू टू विन अ 250 दिरहम का वाउचर, ऑल थैंक्स टू पापा जॉन्स.
1: पार्टिसिपेट इन हु गेट्स द पैन फ्रॉम पापा जॉन्स एंड गेट अ चांस टू विन 250 दिरहम्स पापा जॉन्स वाउचर एक्सक्लूसिवली ऑन बिग 106.2.
0: Right, so there are going to be two people on the phone line. This is how the contest is going to work. अगर आपको जीतना है 250 दिरहम का ये वाउचर, तो आपको क्या करना होगा? You will have to listen very carefully to the information that I'm going to give you. And इस information पे based कुछ सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ. जिसने ज़्यादा जवाब दिए उसके हो गए ये 250 दिरहम का वाउचर. So, alright, so this is some very serious information for people who are serious about pan pizza. Papa John's has just launched its new pan pizza, and this one is loaded with a crispy garlic parmesan crust, edge to edge toppings, Italian seasoning, soft fluffy pan baked base, and 360 degree cheesy goodness. And when we say 360 degree cheese, we mean it. Cheese on top, around the sides, and at the base, with 6 cheese blends layered all around. More crunch, more cheese, more toppings in every bite. This is the new standard for pan pizza. Try the Papa John's new pan pizza today at a Papa John's near you, or order online. Papa John's, better ingredients, better pizza. Ye information aapne suna, isi pe based questions hone wale hain. So if you want to win this 250 dirhams ka Papa John's ka voucher, type out Papa space your name and WhatsApp it to 054-309-1062. Papa space apna naam, WhatsApp karo 054-309-1062 par.
1: Big. Aap sun rahe hai Big 106.2.
2: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बता ना?
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना?
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं.
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी. विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर.
4: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
5: Mini chances with big tickets.
6: 20 million dirham grand prize. 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
5: Plus big spin and weekly e-throws.
6: Buy now with bigticket.ae.
7: This is an 18-plus game. Play responsibly. TNCs apply.
1: The Big Mix. Miss kiya gaya?
8: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते.
9: You have to be quick, very, very quick. It's a rapid fire.
8: चलो डन.
9: What would you choose? Spicy Chinese chowmein या फिर Szechuan noodles?
8: Chinese chowmein
9: या वेज मंचूरियन?
8: वेज मंचूरियन
9: या चिली पनीर?
8: वेज मंचूरियन
9: या हनी चिली पोटैटो? हनी चिली पोटैटो या स्पाइसी फ्राइड मोमोज?
8: हनी चिली पोटैटो
9: या पेरी पेरी चीज फ्राइज? हनी चिली पोटैटो या पाव भाजी विद एक्स्ट्रा बटर?
8: यार पाव भाजी विद एक्स्ट्रा बटर.
9: That यार got me like कि यार इसको से ऊपर तो मैं नहीं जा सकती हूँ. पाव भाजी को नहीं कर सकते डिस्काउंट. We just can't. You were really, really, really quick यार. Very nice. मतलब मुझे लगता है कि मुझे मेरे मैच का फूडी मिल गया है.
8: Yes.
9: And आपको मिलते हैं आज की ओपन मूवी टिकेट्स. Congratulations.
8: Thank you so much.
1: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
0: It's 9:31 on the clock. Let's take a look at Sheikh Zayed Road heading south, right around Trade Center roundabout, going south all the way till Business Bay. You'll find a bit of slow moving traffic. 13 minutes ka delay yahan par hai. 13:13. And then there's a bit of congestion, 71 pe as expected going towards Dubai Mall. And 75 par aapko traffic milega Sheikh Rashid Street par. This is going towards Dubai Frame. Udmita is a bit congested this morning. 78 pe aapko traffic milega in both directions. There's 66. There's congestion going towards Al Jadaf Dubai Alain Road par. Then there's 44 Russell Core going towards D3. A bit of congestion heading south. And this is Al Qus 4th pe in both directions, in north and south. You'll find traffic. Umsikim Street is a bit busy going towards Hills Mall, and then Mall of the Emirates and Hetsa Street par bhi aapko milegi 4 se 5 minute ki der. And this is going towards 44 from 311. Good news is that 611 is completely free of congestion. Bit of congestion at Beirut Street as well. And this is going south after Medina Mall.
4: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
10: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ, देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिंह ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 10:09।
1: Bollywood.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ।
3: Hi Manji, how are you?
4: I am good. दीपी किसकी है? आपकी है कि आपकी बेटी की है?
3: मेरी है।
4: यार शिल्पी कितने साल की हो? 14-15?
3: नहीं यार, मैं तो 32.
4: Honestly, from that DP, you don't look more than 16.
3: एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वो मैंने AI से बुलाया
4: है। हाँ चलो शुक्र है, सच बोला बेटा। मुझे तो यहाँ पे एंग्जाइटी होने लगी थी, भगवान ये कैसी ना इंसाफी है, शिल्पी की स्किन ऐसी और मेरी स्किन में पिंपल्स। फिलहाल जर्मनी जाने का मौका आपको मिल सकता है। योर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द जर्मन वर्ड यूज्ड एवरीवेयर टू विश समवन अ हैप्पी जर्नी, अ सेफ जर्नी? ऑप्शन ए है गुटेन रेज, ऑप्शन बी बोन एपेटीट, ऑप्शन सी चाओ। एंड सही समय पर सही जवाब देने के साथ साथ कंग्रेचुलेशंस शिल्पी जी, आप हो गई हैं शॉर्ट लिस्ट फॉर दिस ट्रिप टू जर्मनी।
5: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: It is 10:29 on the clock, and let's take a look सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. आपको हल्का बुल्का ट्रैफिक मिलेगा मुसाफा इंडस्ट्रियल पर E30, and this is going towards Ramadan. इसके अलावा everything is smooth going. There was quite a lot of congestion आज सुबह, unusual traffic था आज Abu Dhabi में, but now everything is back to normal. Then there's 311 E11 in Sharjah heading south going towards Dubai. आपको usual 6-8 मिनट तक की देर एक्सपेक्ट करनी है. Then there's Beirut Street मदीना मॉल के बाहर heading south, a bit of congestion also at Drayton around about. Once again going south, this is E11 Sheikh Zayed Road, and 44 per be going towards Business Bay from B3, you'll find 4 se 5 minute ki der.
7: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
5: Big 106.2.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिम सिम ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now. Big 106.2. That's my song.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पांच? पांच।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
1: Tum kar hi nahi sakte. Chaho bhi to nahi kar sakte.
2: So kya karte ho aap, Labbu?
3: I'm a qualified pharmacist.
2: ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. लेट्स सी आपका उसके पास सही जवाब है या फिर नहीं है. अच्छा, आप मूवीज देखते हैं, एनिमेटेड फिल्म्स?
3: एनिमेटेड फिल्म्स अभी थोड़ा कम है. पहले देखते थे.
2: बचपन में देखा है?
3: या काइंड ऑफ.
2: फिर तो शायद हो सकता है इसका जवाब पता हो. Which German fairy tale character has super long hair that is let down from a tower window? Your options are Rapunzel, Cinderella or Thumbelina.
3: First one only.
2: It is Rapunzel. That's the correct answer. देखी नहीं देखी फिल्म आपने ये वाली?
3: No. I just heard about some stories, you know, the Pico books and all. That's only.
2: ये miss out हो गई. कोई बात नहीं, जर्मन जा रहे हो, थोड़ी सी जर्मन नॉलेज तो बढ़ चुकी है अभी तक.
3: Right.
2: Let's see. Congratulations. आपका नाम रजिस्टर हो चुका है. You are one step closer to big check into Germany.
3: Thank you.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: मेरा तो बीच बीच में होता रहता है। क्या लाइव खाने में बताओ मुझे आज कॉल करके 801-0062 पर।
2: Big 106.2 The Beat of Bollywood।

0: A staycation from just 250 dirhams? Yes, really! I found the deal! Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है चुंबक पार्ट 2 एंड चुंबक इज अ सीरीज ऑफ कोर्स जो सारा भाई वर्सेस सारा भाई के फिल्म मेकर्स ने बनाया है. पार्ट 1 मैंने देखा, बहुत धक्के से देखा एक्चुअली, बहुत पुश कर करके देखा, लेकिन मैं खत्म तब भी नहीं कर पाई. अब मैं खत्म नहीं कर पाई हूँ, लेकिन पार्ट 2 जो है वो अक्टूबर 1 को रिलीज होने वाला है, स्टारिंग द मैग्नानिमस कास्ट ऑफ सारा भाई वर्सेस सारा भाई. बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वहीं के लिए गए हैं, स्टार्स नीना गुप्ता एज वेल, सुमित व्यास. एंड अगर आपको ब्रेन रॉट फैमिली ड्रामा पसंद है तो ये वाला आपके लिए परफेक्ट है. अक्टूबर 1 से पार्ट 2 रिलीज हो रहा है. अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, मन है कि वो वाली वाइब वापस चाहिए, यू कैन एक्चुअली वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. देयर आर मोर मूवीज रिलीजिंग ऑन नेटफ्लिक्स. कब, कहां, कैसे, कौन कौन सी बताती हूं इन अ बिट.

0: 105.2, the beat of Bollywood.
1: Early in the morning,
0: the Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's and Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Listen to her every day.
2: Mugambo! Khush hua!
3: Sachi! There's so much pressure on you, Sachi. You always have to be honest.
4: Yeah, true.
3: बहुत प्रेशर वाली जिंदगी होगी, तो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलती होगी साची।
4: डर लगता
3: है। बिल्कुल। फिलहाल थ्री थिंग्स दैट यू डू बिफोर यू गो टू बेड।
4: आई चैंट अप। अरे आई बेड।
3: टाइम खत्म, फटाफट साची, यू हैव टू बी क्विक आल्सो।
4: ओके,
3: नेम थ्री थिंग्स दैट आर रेड।
4: रोज, केसर एंड लाइट।
3: राइस, ओके। केसर कौन सा लाल केसर है यार? तो सैफरन इज ऑरेंज, इट्स अ कलर।
4: नो, द एडिबल सैफरन व्हिच यू पुट इन योर खीर।
3: आई नो, बट इट्स कॉल्ड सैफरन बिकॉज़ इट्स सैफरन कलर। ओके, तीन गाने जिनमें दिल आता है।
4: दिल ही तो है, दिल का क्या।
3: अयो, टाइम खत्म।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक। 5 पीएम टू 9 पीएम The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
5: Usual midday traffic शुरू हो चुका है। आपको अलखेल रोड, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, एरियाज अराउंड बिजनेस बे, डाउनटाउन अलबर्शा एंड मीडिया सिटी, पैची ट्रैफिक मिल जाएगा। उसके साथ साथ कहीं और फंसे हो, लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर।
6: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
7: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
0: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड सितंबर शुक्र है यार 2 weeks से खत्म हुआ है, लेकिन खत्म तो हुआ है. खत्म होते होते अक्टूबर के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देखा जा रहा है. मिर्जापुर रिलीज हुई थी इन सितंबर, लेकिन अगर आपने थिएटर्स में अभी तक ये नहीं देखी है, वेट थोड़ा और कर सकते हो. अक्टूबर 30th को अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो जाएगी ये. एंड दिस वन मोर मूवी ऑफ पंकज त्रिपाठी. अगर आपको उनको एक और वर्सटाइल कैरेक्टर में देखना है, सॉफ्ट कैरेक्टर में देखना है, दिस वन मोर फिल्म जो कि अक्टूबर में ही नेटफ्लिक्स आने वाली है. व्हाट्स आवर फिल्म एंड इट्स एन एब्सोल्यूट क्यूटी क्यूटी पूकी फिल्म. कौन सी है बताती हूं इन अ बिट. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.
3: पूरे देश को पगला दूंगा. अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो. नाम या दाम? नाम
4: मनी फॉलोज माय ब्रदर.

0: ना पगला दूंगा पूरे देश को।
1: बिग फायर है तू,
2: वाइल्ड फायर है।
3: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्प राज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: यार तुमने कभी बताया ना कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड ये फिल्म देखने के बाद आपके मुंह से निकल ही जाएगा यार, ओ माय डॉग. फिल्म रिलीज हुई थी इन सितंबर, लेकिन 1 अक्टूबर से आपको मिल जाएगी ये नेटफ्लिक्स पर. एंड यहाँ पर बहुत लेट रिलीज हुआ था, बट इफ़ यू आर अ डॉग लवर, दिस फिल्म मतलब इट विल हैव योर हार्ट. इट हैज़ 250 डॉग्स की कास्टिंग. एंड जस्ट नॉट दैट, द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय अमित राय, जिन्होंने ओ माई गॉड पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है. लेकिन उन्हीं का डॉग, उन्हीं का पेट इस फिल्म में भी है. एंड जस्ट नॉट दैट, यू कैन ऑल्सो वॉच पंकज त्रिपाठी इन दिस फिल्म. और इतनी क्यूट फिल्म है ना, इतनी हार्ट फेल्ट फिल्म है कि अगर आपको बुरा दिन जा रहा है, ट्यूजडे अच्छा नहीं निकला है, यू कैन एक्चुअली गिव इट अ वॉच. हाँ, आज नहीं देख सकते, लेकिन अक्टूबर 1 को रिलीज हो जाएगी ऑन नेटफ्लिक्स. दिस वन इज एक्चुअली माई रिकमेंडेशन, ज़रूर देखना जब भी मौका मिले आपको. मुझे थैंक यू करने आ जाना, लेकिन अपनी आर के पेज पर AVNI Y AAA. अंटिल देन, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: आपकी जॉब का, लेकिन तब भी खाना खाने के बाद नींद आ रही है। इट्स एक्चुअली टाइम फॉर यू टू हैव वन कप ऑफ ब्लैक कॉफी।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज योर चांस टू गो टू दिस ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप वी कॉल इट बिग चेक इन टू जर्मनी. आपको मैसेज भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर, लिख लो, याद कर लो, 0543091062. टाइप करो बिग चेक इन स्पेस योर नेम और भेजो यहाँ पर. एंड खाने की बातें मैं बहुत करती हूँ, लेकिन जब भी हम पिज्जा पास्ता यहाँ पर खाते ना भाई, वो मज़ा नहीं है जितना मज़ा है जब हम वेकेशन पर जाके ये ऑर्डर करके खाते हैं, बिकॉज दोज कैलोरीज ऑल्सो डोंट काउंट, राइट. 3054309106 is the WhatsApp number. जल्दी जल्दी करो, बिकॉज रजिस्ट्रेशन जो है बहुत जल्द बंद हो जाएंगी. यार अपना नाम तो भेजो, क्या पता रैंडमाइजर आज आपका नाम पिक कर ले, मैं आपको कॉल कर लूँ, आप वो कॉन्टेस्ट जीत लो, एंड देन यू आर वन स्टेप क्लोजर फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी. नंबर रिपीट कर देती हूँ फिर से, 0543091062.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni. On Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आज मैंने कॉल किया है फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी नुमान को. हाय नुमान.
3: हाय अवनी, हाउ आर यू?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ.
2: आप क्या करते हैं नुमान वैसे?
3: मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, मैं डू में काम करता हूँ. वैसे मेरा थोड़ा टेक्निकल डिपार्टमेंट है.
2: ओ, आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट. जब भी मेरा अभी बीच में कभी भी सिग्नल जाएगा ना, मैंने आपको फोन कर देना है.
3: जी बिल्कुल.
2: अच्छा, वेकेशन क्यों चाहिए आपको नुमान?
3: एक्चुअली मैं सोलो ट्रैवलर हूँ और पास्ट 10 ईयर से ऑलमोस्ट मैं ट्रैवलिंग करता हूँ. और यूरोप ये है कि अभी तक ट्रैवल नहीं किया मैंने, लेकिन अभी प्लान करता था यूरोप को. और फिर मैंने आपका प्रोग्राम सुना तो उसमें पता चला कि आप लोग जर्मनी के लिए जो है वो स्पॉन्सर ट्रिप कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई कर लूं.
2: अच्छा, वाई नुमान, वाई सोलो ट्रैवलर? ग्रुप में मजा नहीं आता है आपको या अपने दोस्तों के साथ जाओ? फर्क क्या है?
3: ग्रुप में ये होता है कि आपकी डिपेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है. लाइक एट द लास्ट मोमेंट अगर कोई बैकआउट कर जाए या किसी के डिफरेंट प्लान हो तो फिर आप बाउंड हो जाते हैं. तो मैं प्रेफर करता हूँ कि सोलो ट्रेवल करूँ अपने प्लान के हिसाब से.
2: मुझे समझ लग गया है, आपको दोस्ती में ट्रिप पे ना जाने के इतने धोखे मिले हैं कि अब आप सोलो ट्रैवलर बन गए हो. नहीं
3: ऐसे ही
2: मुझे लगता है हर सोलो ट्रैवलर की यही कहानी है कि दोस्त मना कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाते हैं लेकिन बाद में उसी ग्रुप में लिख देते हैं नहीं मैं तो नहीं जा सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिली है. लास्ट मोमेंट पे, इसलिए आप अपने दोस्त पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते. लेट्स सी, चलो अगर आप जर्मनी जाते हो या नहीं जाते हो फिर उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ना उनको ऐसे जलाने के लिए फोटोज भेज देना.
3: डन हो गया.
2: ओके, आई एम गोना स्टार्ट विद द कॉन्टेस्ट. मैं आपसे एक जीके का सवाल पूछने वाली हूँ, विच इज द जर्मन नॉलेज. लेट्स सी आपको पता है या नहीं पता.
3: ठीक है, ओके करें.
2: विच फेमस डिजर्ट मेड विद चॉकलेट चेरीज एंड व्हिप्ड क्रीम इज नेम्ड आफ्टर अ जर्मन फॉरेस्ट? योर ऑप्शंस आर ब्लैक फॉरेस्ट केक, बी चॉकलेट ब्राउनी या फिर सी फ्रूट केक.
3: ब्लैक फॉरेस्ट केक आई गेस.
2: ज्यादा सोलो ट्रैवल नहीं कर लिया आपने?
3: मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ चीजों के वाले से. आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, बट स्मार्ट गेस आई गेस.
2: यस, यू आर राइट. यू कुड बी रॉन्ग बट यू वर नॉट रॉन्ग. दैट्स द करेक्ट आंसर.
3: थैंक यू.
2: कांग्रेचुलेशंस नुमान, यू आर वन स्टेप क्लोजर टू बिग चेक इन टू जर्मनी. लेट्स सी आप हमारे साथ जाते हो या नहीं जाते हो, लेकिन अपनी पैकिंग में क्या करते हो फिर अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो? हाउ डू यू पैक?
3: मोस्टली बस दो तीन पैसे. मैं फोटोजेनिक सा बंदा हूँ, मैं तस्वीरें मेरा लेता हूँ जाके, तो मैं अपने मेरा जो क्लोथिंग है वो बहुत ज्यादा होती है. बट ये है कि मोस्टली क्लोथ होते हैं और जो पर्सनल हाइजीन का सामान होता है लाइक परफ्यूम्स हो गए या बॉडी वॉश शैम्पूज वगैरह, इस तरह की चीजें. मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज नहीं है जो मैं मतलब स्पेसिफिकली अपने साथ कैरी करूँ.
2: तो बेसिकली आपने सोलो ट्रैवलर्स को टिप्स दे दिए कि ट्रैवल अकेले करना है तो कैसे करना है.
3: जी जी, और मोस्टली आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप वहाँ पे हर किसी को कह सकें कि आपकी पिक्चर ले ले पर.
2: फटे उसमें तो लड़कियों का तो फुल कॉन्फिडेंस होता है, फोटो चाहिए उसके बाद जो मर्जी हो.
3: जी जी बिल्कुल.
2: थैंक यू सो मच. आई रियली विश कि आप इतने फोटोजेनिक हो कि जर्मनी की फोटोज भी आप अपलोड करो और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करो.
3: इंशाल्लाह.
2: थैंक यू सो मच नुमान. थैंक यू.
3: थैंक यू.
2: बाय.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: शाम ये राजो
1: छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल 106.2 द बी

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. और मैं बात कर रही थी यार वो वाली फिल्में जो अक्टूबर में थिएटर से हटकर ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं. लेकिन अक्टूबर का कैलेंडर के बाद नवंबर का भी आ चुका है यार. दायरा रिलीज हुई है, हालांकि ये लास्ट वीकेंड रिलीज हुई है यार दायरा. करीना कपूर खान की ये फिल्म जो कि मैंने अभी तक नहीं देखी, आई हैव मिस्ड ऑन दिस वन. लेकिन मैं 13 नवंबर तक का तो वेट नहीं करूंगी, कर नहीं पाऊंगी. नहीं यार कर ही नहीं पाऊंगी मैं थिएटर में देख लूंगी. बट यू एक्चुअली हैव अ चॉइस. अगर आप 13 नवंबर तक रुक सकते हो बिकॉज देन इट विल बी अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. मेघना गुलजार की फिल्म दायरा स्टारिंग करीना कपूर खान इन द मेन लीड्स. भाई ये मजे तो हैं घर में बैठने की फिल्म के ना, अलग मजे हैं. यू टेल मी 800-1062 पे कॉल करके विच वन डू यू प्रेफर, थिएटर और ओटीटी. सच्ची सच्ची बताना. अंडरलाइन कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैंने पूछा था एक सवाल कि what would you choose, theater or OTT? Let's see who's on the call. Hello.
2: Hi Avni, how are you?
1: मैं ठीक हूँ. क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम रमन अवनी.
1: Yes रमन, क्या चूज करोगे, थिएटर या OTT?
2: मैं तो थिएटर ही चूज करूंगा जी.
1: बड़े एडवेंचरस हो, OTT वाले आप कह रहे हो आज से फिर घर पे बैठे देखते हैं.
2: नेटफ्लिक्स उसके लिए है कि जो फिल्म हमारी रह जाती है वो हम नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं.
1: अच्छा, आप कह रहे हो सिलेबस है. सिलेबस है कि सारा कंप्लीट करना है.
2: वो सबसे छोटा जी वो हमारे लिए, लेकिन जो थिएटर पे देखने का मजा है वो पॉपकॉर्न और पेप्सी वो थिएटर पे मिलते हैं ना, वो नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलते हैं.
1: ये तो सही बात कर दी आपने. लेकिन कोई ऐसी एक फिल्म जो आपने थिएटर में नहीं देखी थी, मिस हो गई थी, फिर आपने OTT पर देखी, फिर आपको हुआ ओहो यार ये मैंने कैसे मिस कर दी थिएटर में, कौन सी थी ऐसी फिल्म?
2: ऐसे कोई ध्यान जाती नहीं क्योंकि नॉर्मली मैं कोई फिल्म छोड़ता नहीं पिक्चर हॉल पे. नई फिल्म हो गया अंदर. एक छोटी थी मेरी अल्फा छोटी थी जो मैंने अपने OTT पे भी नहीं देखी, मैंने नेटफ्लिक्स पे भी नहीं देखी है.
1: ओके,
2: अल्फा नहीं देख पाया.
1: तो आपने जब उसके रिव्यू सुने आपको लगा नहीं कि अच्छा हुआ नहीं देखी आपने?
2: तो यही लगा कि कोई इतनी अच्छी फिल्म नहीं है, यही रिव्यूज आए थे तो मतलब मौका नहीं मिला उसको देखने का. नॉर्मली बता रहा हूँ कि सैटरडे मेरा फिक्स होता है कि फिल्म आएगी तो वो देखनी है.
1: वाओ, दैट्स सो नाइस.
2: जो अगर दो आती है तो संडे को.
1: मुझे लगता है कि मुझे कोई मेरे जैसा मिला है क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम कि मेरा सिलेबस है हर फिल्म देखना, ऐसे लगने लगा है.
2: शनिवार तो मैं मिस ही नहीं करता हूँ जी, चाहे मुझे 11:30 का शो देख के आना पड़े, 11 का शो देख के आना पड़े. नॉर्मली लेट शो ही होता है पर फिक्स है कि सैटरडे को फिल्म देखने जाना ही जाना, कोई भी नई फिल्म आएगी तो.
1: वेरी नाइस, खुद के लिए ही करना चाहिए.
2: अगली बार हम आपकी टिकट बुक करवा लेंगे.
1: दैट्स सो नाइस, थैंक यू सो मच. लेकिन अल्फा हैविंग सेड दैट इतनी बुरी पिक्चर नहीं है, अच्छी खासी मूवी है, आप देख सकते हो अगर आपको OTT पर देखनी है.
2: मौका मिलेगा उसको भी देख लेंगे.
1: थैंक यू सो मच रमन फॉर कॉलिंग.
2: ओके अवनी, बाय बाय. बाय बाय.
0: Covering the changes now. This is Fan Network News from the BBC.
3: BBC News with Roisin Hasty. The lawyer of a Spanish pensioner whose eviction from her home last week sparked massive protests has said she'll be able to move back in after a deal was reached with the company that evicted her. The lawyer said 87-year-old Mari Carmen Abascal would pay a rent similar to what she'd originally been paying. President Trump has announced plans for the construction of the largest steel plant in U.S. history to be built in Iowa. It comes as the president is trying to bolster his economic record ahead of November's midterm elections. The French Prime Minister, Sébastien Lecornu, has warned that any escalation in student protests being held at high schools across the country would be irresponsible. More than 160 people were arrested on Monday. The demonstrations, some of which have turned violent, have seen teenagers blockading their schools. The artificial intelligence company OpenAI says it's scrapped the planned release next month of its next AI model due to safety concerns. It said the model did not meet standards as regards staying with authorized bounds. Loud explosions being reported in Ukraine's capital Kyiv in the early hours of the morning, with several buildings damaged. President Volodymyr Zelensky said 9 people had been killed in Russian attacks on Monday. The Argentine president, Javier Milei, has threatened to start legal action against the British government unless it puts a stop to oil exploration work off the coast of the Falkland Islands. Mr. Milei set a 2-week deadline for the Sea Lion oil field project to be scrapped. And the head of FIFA, Gianni Infantino, says football's world governing body will assess proposals to release more funding for its members. It follows calls from 2 federations for a payout of at least $10 million for every national association from FIFA's reserves. Mr. Infantino said FIFA's council will vote on the proposal in mid-October.
0: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant color, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Big 106.2.
4: छुपी सॉरी तान्या, हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है. वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए, दैट्स नॉट माय थिंग.
0: She's bubbly, bringing fresh energy and a whole lot of flavor. The Big Mix with Avni on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज अ 3 PM पीक लंच आवर टाइम. लेकिन घूमने फिरने से फुर्सत कहाँ मिले हमें. अगर आप मियामी जा नहीं सकते हो तो मियामी की वाइब तो यार यहाँ पर ले सकते हो. आबू धाबी में होने वाला है ये मियामी फेस्टिवल अक्टूबर 16 टू नवंबर 14. डेट्स बता दी हैं क्या क्या है इस फेस्टिवल में, क्या क्या होगा. वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: It's past 3 PM. अगर अभी तक लंच नहीं किया है, इट्स द पीक लंच आवर टाइम, कर लो बिकॉज जो गेम मैं खेलने वाली हूँ उसके बाद तगड़ी भूख लगने वाली हूँ। उसके बाद
2: Bollywood.

0: खान का ट्रैक सॉन्ग का नाम था हल्का हल्का, एंड हल्की हल्की खुशबू तो आ रही है यार, लेकिन मायामी फेस्टिवल की जो होने वाला है अबू धाबी में।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड मैं बात कर रही थी मायामी वाइब्स इन अबू धाबी। ये होने वाला है, इट्स 30-day फूड फेस्टिवल लाइफ स्टाइल एंड रिटेल पॉपअप जो कि मरीना मॉल अबू धाबी में होने वाला है, विद अ मिक्स ऑफ फूड ट्रक्स, लोकल ब्रांड्स, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स, एंड इट विल ऑल्सो हैव अ ड्राइव थ्रू सेटअप। अक्टूबर 16 टू नवंबर 14 होने वाला है ये, 3 PM टू 12 AM डेली। और ऐसे फेस्टिवल्स में ऐसे जाने से मुझे कोई मना कर देना, मैं तो रुस जाती हूँ यार। मतलब एक फेस्ट से दूसरे फेस्ट, दैट्स व्हाट आई मीन एक्चुअली। अगर आप भी मेरी तरह घुमक्कड़ हो, डू गो देयर अबू धाबी में कभी भी, अक्टूबर 16 से नवंबर 14 में कभी भी आपका चक्कर लगता है, इट्स अ ड्राइव थ्रू यार, एक बार घूम के तो आ ही सकते हो। बाकी अगर मूवी के लिए जाना है, ओपन मूवी टिकट्स मैं देने वाली हूँ। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Listen to her every day.
2: Mugembo! Khush hua!
3: Sachi! There's so much pressure on you, Sachi. You always have to be honest.
4: Yeah, yeah, true.
3: बहुत प्रेशर वाली जिंदगी होगी तो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलती होगी साची.
4: डर लगता
3: है. बिल्कुल. फिलहाल थ्री थिंग्स दैट यू डू बिफोर यू गो टू बेड.
4: आई स्टैंड अप.
3: अरे
4: आई बेड.
3: टाइम खत्म. फटाफट साची, यू हैव टू बी क्विक आल्सो.
4: ओके.
3: नेम थ्री थिंग्स दैट आर रेड.
4: रोज, केसर,
3: राइस. ओके. केसर कौन सा लाल केसर है यार? तो सैफरन इज ऑरेंज. इट्स अ कलर.
4: नो, द एडिबल सैफरन व्हिच यू पुट इन योर खीर.
3: आई नो बट इट्स कॉल्ड सैफरन बिकॉज इट्स सैफरन कलर. ओके. तीन गाने जिनमें दिल आता है.
4: दिल ही तो है.
3: और
4: दिल का क्या स्पोर्ट.
3: Ayo, time khatam.
5: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
6: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है.
7: मुझे खुद का पता था यार. अगर हूँ तो हूँ.
5: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
5: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
10: दिन ढलता है, शाम होती है, लेकिन शाम होते होते पसीने बढ़ क्यों जाते हैं? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. इट्स 52% राइट नाउ विद 38 डिग्रीज टेम्परेचर.
5: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

चल गया कौन सा नशा करता है, वो नए नए फूलों से मजा करता है। ये कैसा बंदा भेजा तूने दुनिया में खुदा, ऐसी गलती थोड़ी ना खुदा करता है।

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 pe main hu Avni aapke saath and you have a chance to win open movie tickets this time. Mera show pe The Big Mix. Karna kuch nahi hai, aapko participate karna is game mein. कॉल करो मुझे इस टोल फ्री नंबर पर जिसका नंबर है 800-1062. वहां पे मुझे कॉल करो कि मैं कॉल उठाऊंगी. आई एम गोना प्ले दिस खाओ पियो ऐश करो गेम विद यू. दो डिशेस दूंगी एंड आपको रैपिडली दोनों में से कोई एक चूज करनी है. विच वन इज योर फेवरेट? दोनों में से कोई एक. बहुत सारी डिशेस हैं लेकिन आपको रैपिड फायर की तरह ये राउंड खेलना मेरे साथ. दिस इज कॉल खाओ पियो ऐश करो एंड जो भी कॉल करेगा 800-1062 पर वन लकी विनर विल गेट द चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स. अब आप फूडी हो, मुझसे बड़े फूडी हो, फिर भी ये गेम नहीं खेल रहे हो तो भाई अपना चांस गवाओगे और तो कुछ नहीं होगा. कीप इट लॉक टू बिग 106.2. नंबर है 800-1062.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the time we play खाओ पियो ऐश करो. Let's see आज कौन है कॉल पे. Hello.
2: Hi. Good afternoon.
1: Good afternoon. कौन बात कर रहा है?
2: Govind this side.
1: Hi Govind. आपने लंच कर लिया?
2: लंच नहीं किया आज, थोड़ी सा वर्कलोड ज्यादा था तो ऑलमोस्ट काम खत्म हुआ है और 30 मिनट बाद लंच करेंगे.
1: इतनी लेट लंच? मुझे लगा था मैं ही इतनी लेट लंच करती हूँ. चलो ठीक है, आपको थोड़ी और भूख लगवा देते हैं, भूख बढ़ा देते हैं आपकी. मैं आपको दो डिशेस दूंगी, आपको दोनों में से कोई एक चूज करनी है फर्स्ट एंड फर्स्ट. ठीक है?
2: Sure.
1: क्या चूज करोगे गोविंद, पनीर बटर मसाला नान या फिर शाही पनीर प्लस जीरा राइस?
2: पनीर बटर मसाला नान.
1: ओके, पनीर बटर मसाला नान या फिर छोले भटूरे?
2: पनीर बटर मसाला नान.
1: पनीर बटर मसाला नान या फिर राजमा चावल?
2: पनीर बटर मसाला नान.
1: पनीर बटर मसाला नान या फिर दाल मखनी प्लस पराठा?
2: पनीर बटर मसाला नान.
1: ओह गॉड, इतना पसंद है पनीर. पनीर बटर मसाला या फिर कढ़ाई पनीर?
2: पनीर बटर मसाला नान.
1: ओके, पनीर बटर मसाला या फिर पालक पनीर?
2: पनीर बटर मसाला नान.
1: या फिर पनीर टिक्का रैप?
2: पनीर

0: कढ़ाई पनीर,
1: पनीर बटर मसाला नान,
0: ओके पनीर बटर मसाला या फिर पालक पनीर,
1: पनीर बटर मसाला नान
0: या फिर पनीर टिक्का रैप,
1: नहीं पनीर बटर मसाला और नान।
0: और अगर आपको वेज बिरयानी दे दी जाए तो?
1: अभी भी पनीर बटर मसाला और नान ही रहेगा।
0: पनीर बटर मसाला नान या फिर चिल्ली पनीर?
1: पनीर बटर मसाला नान। ओह गॉड,
0: या तो आप लंच में यही लेकर आए हो या फिर ये ऑर्डर करने वाले हो।
1: और नान मतलब नान में आप अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। टच वुड, ये ट्यूजडे को मेरा भांजा ही शेफ ही सेम, उसने जो नान बनाया उस पे मोजरेला चीज लगाई और गार्लिक वाला अमूल बटर लगाया।
0: अरे बाप रे, आपने क्या बोल दिया, ये तो मैं अकेला ही नान खा जाऊँ, मतलब मुझे इसके लिए कोई सब्जी की जरूरत ही नहीं है।
1: तो उसमें जो सब्जी का कॉम्बो है पनीर में, उसमें सिर्फ वो बटर मसाला ही जाएगी ना, आपको चिल्ली पनीर में आएगा ना कढ़ाई में आएगा, जो नान के साथ खाने का कॉम्बो है।
0: क्या बात है,
1: आपने जो क्योंकि मैंने अभी खाया ही है रिसेंटली संडे को, तो अभी तक लाइक समझ लो आप।
0: तो अगर आपका भांजा शेफ है तो आप वैसे नहीं करते घर की मुर्गी दाल बराबर?
1: ही इज अ प्राइवेट शेफ, सो वो हमको सिर्फ संडे संडे खिलाता है, तो एक दिन अच्छी लग जाती है वो मुर्गी।
0: That's actually so sweet.
1: और उसमें एक एडवांटेज है, वाइफ को रेस्ट मिल जाता है, वो सोचो।
0: True that, 100%. आप बनाते हो कुछ?
1: हाँ मैं, I am foodie और मुझे कुकिंग करना भी बहुत पसंद है।
0: आपकी बेस्ट डिश क्या है?
1: मेरी बेस्ट डिश है कि देखो नूडल सब लोग कॉमन बोलेंगे जो बॉयस होंगे, लेकिन जो मेरी नूडल है ना वो इतनी स्पाइसी रहती है, सेजवान के साथ डाल के घर पे नूडल बनेगी तो सिर्फ मैं ही बनाऊंगा।
0: ये आप वो वाली नूडल्स की बात कर रहे हो जो पैकेट खोलते हैं उस पे लिखा होता है 2 मिनट नूडल्स, उसकी बात कर रहे हो क्या?
1: बेस तो वही रहता है लेकिन उसकी जो रेसिपी रहती है, ग्रेवी रहती है, वो अपने इंडियन स्टाइल बनती है, इंडो चाइनीज।
0: गोविंद ये आपके लिए, मतलब जेन्युइनली सीरियसली आपने पहले ही डिस्क्लेमर खैर दे दिया था कि नूडल्स की मैं बात करूंगा, लेकिन सच में आप सबसे अच्छी डिश यही है आपकी?
1: नहीं काफी कुछ बना लेता हूँ लेकिन नूडल का कोई तोड़ नहीं है मेरे घर में, मेरे जैसे कोई नहीं बना।
0: ठीक है, मैं भी आपको कॉल करूंगी जब मुझे ये खाने की क्रेविंग होगी, बट फूडी 10/10, कुकिंग में तो खैर अभी मैं जज करूंगी।
1: कर सकते हैं आप।
0: थैंक यू सो मच गोविंद, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: सो मच, थैंक यू।
0: इफ यू वांट टू प्ले हाउ पी ऐश करो विद मी, ऑल यू हैव टू डू इज मैसेज करो इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: श्याम ए राजो छाने नहीं रे बाबा आपते बाबूराव गणपत राव आपते बोल
1: 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 37 डिग्रीज आउट देयर, लेकिन तब भी चिपचिपाहट बहुत ज्यादा है बहुत दिनों से, बिकॉज देयर हैज बीन अलर्ट फॉग एंड मिस्ट का। ह्यूमिडिटी इज एट 50%।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2, बिग 106.2। बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: औजला एक ही का ट्रैक सॉन्ग का नाम था बॉयफ्रेंड। और ये सॉन्ग यार जब आप गेड़ी पे निकले हो ना ड्राइव पर भाई तब सुनने का मजा है।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। अगर आप ड्राइव पे जा ही रहे हो एक और अच्छी खबर है भाई आपके लिए। Now you can lease a brand new SUV from Jator and Skoda with prices starting from 1999 dirhams per month for a 12-month plan. All you have to do is visit selfdrive.ae, TNC apply of course, and अब निकले ही हो ड्राइव पर तो ये वाला भी सुनी लो यार। Arijit Singh's track coming up your way. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
3: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
4: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड जब भी मैं किसी से बात कर रही होती हूँ ना, और मुझे लगता है कि यार इस इंसान के पास काफी अच्छी खासी फाइनेंशियल नॉलेज है, ऑल आई वांट टू से इज
4: करके हम न थकता नहीं कर कर के तेरी तारीफा जिकरदा दिला दूं तनु बुर्ज खलीफा.
3: नहीं नहीं नहीं, इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है आपको. ऑल यू हैव टू डू इज टू गेट दैट फाइनेंशियल नॉलेज. अगर आपको क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फिर मॉर्गेज के बारे में जानना है, ऑल यू हैव टू डू इज विजिट creditmarket.ae या फिर कॉल कर सकते हो 800 Alfred पर. नाउ Alfred कैन हेल्प यू कंपेयर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन एंड इवन मॉर्गेजेस. सो यू ऑलरेडी नो Alfred फ्रॉम insurancemarket.ae, लेकिन अब creditmarket.ae में भी आपकी हेल्प करेगा. बाकी बुर्ज खलीफा के लिए कमिंग अप निकिता गांधी का ट्रैक ओनली ऑन बिग 106.2.

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, जिसका फिलहाल हो रहा जाने का टाइम. पर आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग एफएम, जहाँ पर मैंने रिसेंटली एक रील अपलोड करी है, मानसी और मेरा एटलेस बट लेकिन बॉलीवुड वर्जन. ये गेम जरा देखो जाके 106.2 बिग एफएम के इंस्टा हैंडल पर एंड बताओ कौन खिलाड़ी और कौन अनाड़ी. जो कमेंट हमने लास्ट में आपके लिए भी एक अल्फाबेट सोचा है, छोड़ा है कि उस अल्फाबेट से आपको बतानी है एक फिल्म का नाम. बाकी कल मिलते हैं 1 to 5 द बिग मिक्स पर. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is The Big Thrill. Mansi all set to keep you company here until 9. This Tuesday can be very, very special for one of you jisne participate kiya hai for the big check-in. Yesterday, we're announcing our very first winner. So, if you are shortlist, stay in the network, dil ki dhadkane jo hai, unhein kabu mein rakhiye. हो सकता है आज शाम जो कॉल आपको आए फ्रॉम 801062 विल टेल यू दैट प्लीज पैक योर बैग्स वी टेकिंग यू टू जर्मनी. सो ऑल दोज जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं मेक श्योर दैट यू आंसर दैट कॉल. यू डोंट वांट टू मिस दिस कॉल बिकॉज आप जर्मनी जा सकते हो. फॉर ऑल दोज जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, उन्हें लग रहा है कि यार कहाँ एक व्हाट्सएप हमें जर्मनी लेके जाएगा. Exactly. एक WhatsApp आपको जर्मनी ले जा सकता है. You still have chance, you still have time to participate. All you need to do is सिर्फ check-in करना है. Big check-in, अपना नाम लिख के WhatsApp करना है 0543091062 पर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हाँ जी द टाइम राइट नाउ 5:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Yo, yo, yo, yo, got an Angela.

0: what you want. Your expert travel agent will curate it around you. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, I'm Mansi. This is the Big Thrill, and every single evening, 5 to 6, जब आप ट्रैफिक जैम में अटकते हैं, हम यहाँ जैम करते हैं, माहौल बनाते हैं, एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द नॉन सिंगर्स. इट्स टाइम फॉर द कारियोकी.
1: कारियोकी.
2: गाना आए या ना आए, अगर आपको गाने का शौक है तो गाना चाहिए. दिस इज योर प्लेटफॉर्म. ऑलराइट, ऑल द एसपी फैंस, ऑल द सलमान फैंस, ये गाना आई एम श्योर आपको याद होगा.

इस गाने ने नॉन मुंबईकर्स को भी मुंबई की सड़कें याद दिला दी थी। अगर आपको गाना याद आ गया है एंड गाड़ी में बैठे बैठे ट्रैफिक में अटके अटके आप गाना चाहते हैं, 800-1062 इज माई नंबर। वी आर कारियोकिंग।

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: One big ticket brings many chances to win.
3: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
2: And 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
3: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNC's apply.
5: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: Oi, hoi, hoi, hoi, hoi. 2 घंटा 15 मिनट का डिले इस वक्त और शेख जायद, आपको तो 100% कार्यों की करना चाहिए. अब दिल कैसे लगेगा इतने ट्रैफिक में. हैवी ट्रैफिक, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल. ट्रैफिक ट्रेलिंग वेरी वेरी स्लो. ए फिर उन शेख मोहम्मद बिन जायद, वर्का से मर्डिव, मर्डिव से मोहेसना, नॉट एज बैड एज शेख जायद, बट यहाँ भी आपको 1 घंटे का डिले मिलेगा. फेस्टिवल सिटी, दुबई क्रीक हार्बर, रासल कोर, हैवी ट्रैफिक पूरे रूट पर. ऑल्सो इफ यू ऑन द हेस स्ट्रीट गोइंग टू विच प्रोडक्शन सिटी, 30 to 35 मिनट डिले. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट, कुछ अनयूजुअल आपने नोटिस करा है. शेख जायद पे इतना ट्रैफिक क्यों है मुझे बताओ. 800-1062 पर.
7: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
8: तुम बीमार हो?
9: No.
8: तो लेती क्यों?
9: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं.
8: कैसे हैं सेंसेशंस?
9: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दिल को दहाड़, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, भरभराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, भरभराहट, टपको पहाड़, झपटाहट, झपटाहट, झुबुआ, झुबुलाहट, झुबुलाई, झुबुलाई.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: ट्रैफिक जाम में बैठे बैठे क्या करें, आज तो ढाई घंटे का जाम लगा हुआ है ऑन शेख जायद रोड। वी जाम हियर विद द कैरियोकी, गाना आए या ना आए, इफ यू एंजॉय सिंगिंग देन दिस इज इट। जॉइनिंग अस इज पुनीत। हाय पुनीत।
2: हाय, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, आप कैसे हो? डोंट टेल मी कि आप शेख जायद के ट्रैफिक में अटके हो।
2: नहीं, मैं दूसरे ट्रैफिक में अटका हूँ, पर हाँ ट्रैफिक में ही अटका हूँ।
1: वहाँ ढाई घंटे का है तो आई थिंक इट इज बेटर वेयर यू आर।
2: एक घंटे से तो हूँ ट्रैफिक में, आई होप।
1: करते क्या है आप पुनीत, जो इस वक्त ऑफिस से निकलते हैं?
2: आई एम इन टू बैंकिंग सेक्टर।
1: ओह वेरी नाइस, एंजॉयिंग?
2: नो नॉट एक्जेक्टली,
1: वेरी नाइस,
2: बट अभी देख
1: तो करना क्या चाहते हो? व्हाट इज द वन थिंग दैट यू एंजॉय?
2: अभी स्पोर्ट्स होता है एंड म्यूजिक।
1: ओह सो यू लाइक सिंगिंग एंड म्यूजिक, तो ये बैंकिंग के चक्रों में कैसे पड़ गए यार?
2: पापी पेट का सवाल।
1: ये बात भी सही है, कभी कभार जो आपका शौक आपके शौक पूरे नहीं कर पाता है, मुझसे पूछो। फिलहाल पुनीत को अब इतना शौक है गाना गाने का, तो अब इनकी आवाज में सुनेंगे।
0: कारियोकी

0: अंजी।
1: देखते ही तुमसे जो प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। हाँ, देखते ही तुमसे जो प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। इतने दिन थी कहाँ, दिल ढूंढता ही रहा। कभी लिंकिंग रोड, कभी पैडिंग रोड, कभी रैगिंग रोड, कभी
0: सिटिंग रोड, तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ। हाय, ये जो अंदर आके एसपी साहब आए हैं, ओए होए पुनीत, मजा ही आ गया। ये जो आवाज बदली है आपने,
1: थैंक यू।
0: I love this song. I haven't seen the movie, but I love SP sir and I love his music.
1: Yes. Even we love the song very much. Yeah.
0: Mumbai so aap?
1: Correct. No, not from Mumbai. Okay. I'm from Rajasthan.
0: Rajasthan. To Rajasthan ki galiyon mein mili koi aisi jise dekhte hi pyar ho gaya?
1: Haan, wo samay bhi aisa hi tha, har waqt hota tha.
0: Har waqt hota tha. Koi waqt kahin kisi pe tika ke bas hota hi raha.
1: Haan, tika phir shaadi ho gayi.
0: Bahut badhiya, khush ho usme. Oh, Puneet, you sang beautifully. It was such a fun song and aapne bahut acha gaya. Thank you so much.
1: Thank you so much.
0: Bye. Yeah, karaoke. We just jam here while we're stuck in the jam. If you enjoy singing, you love this gana, give me a call. 800-10-625. Karaoke.
2: Beat 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: एस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलखूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetro T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. T&C apply.
3: The Big Jill.
4: All my favorite music in one spot.
3: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
5: हाय, 2 घंटा 6 मिनट का डिले एग्जैक्ट पर। इट इज वेरी वेरी स्लो मूविंग, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। आई कैन अंडरस्टैंड द पेन जो इस वक्त एग्जैक्ट पर अटके। हैवी ट्रैफिक इन द शेख मोहम्मद बिन जायद मोरिफ टू मुहैस नाउ विल टेक यू एन आर एंड 5 मिनट्स। नादलहमर फेस्टिवल सिटी, रासल खोर इंडस्ट्रियल एरिया, अगेन पैक्ड ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स अलखूज इंडस्ट्रियल एरिया, मूविंग वेरी वेरी स्लो। अगर आप हेसा स्ट्रीट पे हैं, स्पेशली इफ यू गोइंग टुवर्ड्स प्रोडक्शन सिटी, देयर इज अ 45 मिनट डिले। मरीना से JVR, JLT, अगेन अ 25 to 30 मिनट डिले। हैवी ट्रैफिक स्टैंड स्टिल है इस वक्त। अगर आप डिस्कवरी गार्डन्स के आसपास हैं, टेकिंग अल असाइल, एनीथिंग एल्स यू'd लाइक टू रिपोर्ट, मुझे बताइए 800-1062 पर।
2: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
3: Big 106.2. Big.
6: Fire tu.
7: Wild fire.
8: Mera naam hai Pushpa. Pushpa Raj. Apne dam pe banaye main. Naam kaafi hai, pehchan ki zarurat nahi hai.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: I've heard people doing Dubai to Sharjah, Dubai to Abu Dhabi, Ajman to Dubai, but ye pehli baar suna hai, hatta se Dubai roz ye aana jana karte hain. Hi Wajahat.
2: Hi Mansi, how are you?
1: I am good. वैसे by the way, Wajahat जो है वो एक driving instructor है. ये आपके लाइसेंस की
2: इंस्ट्रक्टर ड्राइविंग ट्रेनिंग मैनेजर
1: मतलब आप लोगों को लाइसेंस दिलाने में हेल्प करते हो ना सर?
2: हाँ जी बिल्कुल, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं,
1: ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं
2: जी,
1: ताकि वो पहले अटेम्प्ट में निकाल लें, तो बहुत मुश्किल है.
2: नहीं निकलते, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं निकलते.
1: मैं मुझे एक सवाल पूछना है, मुझे 6 महीने हुए लाइसेंस, मुझे 6 महीने पहले मिला है. जो आप लोग सिखाते हो रोड पे लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं?
2: हाँ ये बात आपने बहुत सही की. देखें हम जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द यूएई, लेकिन जाहिर है इट्स द माइंडसेट फॉर द पीपल हाउ दे आर टैकल ऑन द रोड सिचुएशन.
1: नहीं और लाइसेंस आते ही लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस भूल से क्यों जाते हैं, मतलब इंडिकेटर तक देना भूल जाते हैं.
2: मैंने सुना था आपका लास्ट टाइम आप जो कह रही थी कि 9:30 आप अपने घर की तरफ जा रही थी और अचानक से एकदम सामने आपके एक बंदा आ गया था.
1: हाँ और एक मुझे बात बताओ, ये ट्रेनिंग स्कूल में आप लोग फ्लैश करना क्यों नहीं सिखाते हो? वो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे.
2: बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये जैसे कुछ रैश ड्राइवर्स होते हैं जो कि रोड रेज है, हम लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं. आई होप इंशाल्लाह इट विल बी वर्क.
1: I hope, please do that, especially मेरे रूट पर. फिलहाल वजाहत आप गाड़ी चलाना सिखाते हैं, हम गाड़ियों में गाने

0: गाते हैं तो आज आपकी आवाज में सुनेंगे. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, एसपी सर का गाना. आई एम श्योर अभी जो गा के गए हैं पुनीत, उन्होंने भी बहुत कमाल गाया है, तो आप भी उतना ही अच्छा गाएंगे.
1: Karaoke.

0: हाँ जी,
1: तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। हे तुमसे जो देख

0: रास्ता ही रहा।
1: कहाँ?
0: कभी लिंकन रोड, कभी कार्टर रोड, कभी फेरियर रोड, कभी हार्टर रोड। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा।
1: क्या कमाल गाना है, आई लव दिस सॉन्ग। बट आज तक वैसा मेरा नीचे से सारी रोड्स याद हो, लिंकिंग रोड थी, कैडल रोड थी, पेडल रोड थी, जो मैंने एक भी नहीं देखी है। आपने देखी है?
0: नहीं, मैंने नहीं देखी, लेकिन आई लव टू गो मुंबई।
1: यू हैव बीन टू मुंबई बिफोर?
0: नो, आई हैव नेवर बीन बिफोर, बट आई लव टू गो।
1: चलो जी, एक दिन आपको मौका मिले मुंबई जाने का। गाना आपने बहुत अच्छा गाया है, मतलब अच्छी गाड़ी चलाने के साथ साथ अच्छा है, सिंगर भी है आप, बड़ा मजा आया बजा। थैंक यू सो मच। बट मेरा सजेशन, याद रखना फ्लैश करना सिखाओ स्टूडेंट्स को, बहुत जरूरी है। चलो, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू।
0: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू। बाय।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is the Big Thrill. काफी thrilling and exciting traffic है आज के एग्जाम पे. फिलहाल ढाई घंटे का डिले है. बट ट्रैफिक में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. क्या पता ये ट्रैफिक आपकी जिंदगी का सबसे मेमोरेबल ट्रैफिक हो जाए. यू माइट गेट लकी एंड यू माइट गेट अ चांस टू फ्लाई विद टीम बिग टू जर्मनी. वी आर चेकिंग इन एंड टू पार्टिसिपेट जस्ट सेंड अस अ व्हाट्सएप. बिग चेक इन योर नेम टू 0543091062. इन फैक्ट आज शाम वी आर अनाउंसिंग अ वेरी फर्स्ट विनर. सो अगर आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, मेक श्योर यू आर इन द नेटवर्क. मेक श्योर के आप कॉल उठाए. ऑल्सो वी टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेंड, जो ट्रेंड कर रहा है ऑफिसेज में, इट्स कॉल्ड द लंच थेफ्ट. अब लंच थेफ्ट काफी बढ़ता जा रहा है. पीपल आर डिस्कसिंग दिस ऑन लिंक्डइन, जहां पे लोग एक दूसरे का डब्बा बिना पूछे लिटरली चोरी करके खाते हैं. अराउंड 28% ऑफ एम्प्लॉयज, एक सर्वे में उन्होंने अग्री करा है कि उन्होंने फ्रिज से किसी और का डब्बा निकाल के चख लिया है, मतलब थोड़ा सा खा लिया है. तो मोर ऑन द स्टोरी व्हेन आई कम बैक. किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 6:07 टाइम हुआ है टू प्ले द 5 सेकंड रूल। इट्स अ फन गेम। अगर आपने खेलना है गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. Yeah, Big Thrill. मैं हूँ मानसी. On the phone lines. अपना Bluetooth adjust करते हुए मुकुंद. Hi मुकुंद. Good evening.
3: Good evening मानसी.
2: कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप?
3: मैं अबू धाबी से दुबई जा रहा हूँ.
2: Very nice. Very nice. I don't know what's worse, अबू धाबी से दुबई या फिर दुबई से शारजा. फिलहाल मुकुंद will play the 5-second rule. It's a fun game. आपको मिलेंगे 5 second. मैं आपको दूंगी कुछ categories. तीन चीजें बतानी है. All the very best.
0: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: तीन गुज्जू डेलिकेसीज डिशेस का नाम बताएं.
3: और
2: वेरी नाइस, ऑलमोस्ट देयर. क्विकली नेम तीन करीना कपूर की मूवीज. मेरा दिल प्यार का दीवाना. करीना कुछ होता है. मैं आए हाय हाय हाय, खत्म हो गया मुकुल.
3: टाइम कभी खुजे कभी कम हो जाना.
2: ओ मेरे भाई, टाइम खत्म हो गया. 5 सेकंड में बताना है. तीन ऐसी चीजें जो ग्रीन कलर की होती हैं, आप खा भी सकते हैं. अरे अरे अरे अरे अरे. मूविंग ऑन. तीन ऐसी चीजें जो शादी के बाद मुकुंद तुम्हारी जिंदगी में बदल गई हैं.
3: टाइम पे आना. अच्छा. झूठ नहीं बोलना.
2: टाइम और एक सेकंड, क्या बोला था पहले? टाइम खत्म हो चुका है. टाइम पे आना.
3: टाइम पे घर आना, जो मैं पहले नहीं आता था. जब भी मैं मतलब मॉम डैड के साथ रहता था, यहाँ पर दुबई में मेरे को टाइम पे आना पड़ता है. 140 की स्पीड से चलाना पड़ता है और टाइम पे पहुँचना पड़ता है.
2: जब टाइम पे नहीं पहुँचो घर पे, तो फिर बहाना क्या देते हो?
3: मेरे को टाइम पे पहुँचना ही पड़ता है, वरना घर पे खाना नहीं मिलता है.
2: ओहो, देखो यार, जितनी भी बीवियां सुन रही है, चाहती हो कि अगर हस्बैंड टाइम पे आए तो खाना देना बंद कर दो रात का, तो वो अपने आप टाइम पे आ जाएंगे.
0: 5 second rule.
4: Oh yeah.
2: मुकुंद, बहुत ही खराब खेला आपने, बहुत ही खराब, बट बड़ा मजा आया आपसे बात करके.
3: थैंक यू.
2: यही 5 second rule आपने खेलना है. की रूल है, फोन उठाओ, नंबर घुमाओ, 800-1062.

0: Bollywood.
1: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
2: नहीं, ये तो मुफ्त है।
1: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
0: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, ये है Big Thrill Mansi and we've got Kabir. Kabir शर्मा गए थे, घबरा गए थे, हुआ क्या था?
2: नहीं, घबरा नहीं रहा था क्योंकि मेरी ये फर्स्ट टाइम कॉल है किसी रेडियो पे.
1: वेलकम है जी आपका. डेब्यू मुबारक हो आपको कबीर. करते क्या आप?
2: मैं जॉब करता हूँ.
1: वेरी नाइस. कहाँ?
2: BMW अबू धाबी मोटर.
1: ओ माय गॉड फैंसी. वैसे ऑफिस से याद आया, आपके ऑफिस में आपका टिफिन विफिन कोई चुराता है?
2: नो,
1: कभी नहीं हुआ ऐसा दैट यू गॉट सम नाइस लंच एंड समबडी एल्स हैड अ फीस्ट.
2: नो, लंच असल में अभी लेकर जाना स्टार्ट किया, इससे पहले बाहर ही खाते थे.
1: आपने कभी किसी का खाना चुरा के खाया है ऑफिस में?
2: ये
1: पूछना चाहिए था मुझे.
2: नहीं, ऑफिस में नहीं, बचपन में किया है.
1: क्या टिफिन चोरी कर लिया था बच्चे का?
2: स्कूल जब जाते थे ना तो उस टाइम.
1: ये जब तक कबीर बाहर से खा रहे हैं, देखो आप लोग सही हो. जिस दिन ये ऑफिस में आके खाने लगेंगे ना, BMW वालों, ये आपका डब्बा 100% निकालेंगे फ्रिज में से. फिलहाल वी विल प्ले दिस फन गेम इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह यस.
1: क्विकली नेम 3 थिंग्स दैट स्टार्ट विद द लेटर W. जो आपको वेडिंग्स में बहुत ज्यादा बुरी लगती है.
2: बुरी लगती है एक जो मेहमानों को बुलाना बहुत ज्यादा.
1: हाँ, टाइम खत्म हो गया. फटाफट कबीर, 5 सेकंड्स, वेरी क्विक. 3 थिंग्स यू कैन मेक आउट ऑफ मिल्क. दूध, दही, पनीर, खीर, कुल्फी, आइसक्रीम, लस्सी. नहीं पसंद है आपको? लैक्टोज इंटॉलरेंट हो आप?
2: नहीं,
1: कितना शर्मा रहे. 3 चीजें जो आप नोटिस करते हैं लड़कियों में.
2: लड़कियों में नो सॉरी.
1: वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. अच्छा, 3 ऐसे झूठ जो आप अपने जॉब पे बोलते हो.
2: जॉब पे झूठ? अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में.
1: बहुत बढ़िया. ये 5 सेकंड वाला गेम मुझे नहीं लग रहा है कबीर आप खेल पाओगे.
0: 5 सेकंड रूल.
1: हर जवाब आप 4 सेकंड के बाद देते हो. मैंने कहा ना इट साउंड वेरी वेरी इजी, बट जब यहाँ खेलने आओ तो पता चलता है कि टफ है ना.
2: टफ है, लेकिन मुझे इसमें जो एक आपका जो क्वेश्चन था ना, वो उसके बारे में जस्ट एक्सप्लेन करूंगा जल्दी जल्दी, बिफोर यू वेस्टिंग टाइम. उसमें क्या है, मेरी शादी हुई कोरोना में, तो उस टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं था. 2020
1: 20 लोगों में निपट गए आप तो.
2: हाँ बिल्कुल, मतलब वो कोरोना के बीच में खाली बस 2 बंदे बुलाए और शादी होगी, बस ऐसी हो.
1: पर वो 2 बंदों में से भी एक ने बोला होगा कि नान कच्चा और दाल में नमक ज्यादा, रिश्तेदारों का ये है.
2: वो थे ही घर के सारे.
1: तो जूते वूते चोरी हुए थे? नहीं हुए थे. वो पैसे भी बच गए.
2: इतनी बड़ी हुई
1: वो पैसे. बहुत लकी हो भाई कबीर, बहुत लकी हो. थैंक्स बोलो कोरोना को. चलो, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय.
2: थैंक यू सो मच. थैंक यू.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Thrill and excitement तो आपको होना चाहिए because this hour we'll be announcing our very first finalist जो fly करेगा with Team Big to Germany. तो अगर आप already shortlist हो चुके हैं, दिल की धड़कने संभालो, drive कर रहे हो तो गाड़ी side में रखना. अगर call आता है from 800-1062, फिलहाल you still have a chance. There are a few seats left. अगर आप भी इस विमान में Team Big के साथ fly करना चाहते हैं, very simple shortlist होने के लिए you have to register, big check in your name, WhatsApp करना है 0543091062 पर. फिलहाल लेट्स सी कौन होगा पहला फाइनलिस्ट जो बैठेगा ऑन दिस फ्लाइट टू जर्मनी.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:06।
2: Bollywood.

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: 34 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 31। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 67% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: USAmarkets.ae. Dreaming of the perfect holiday? Tell me what you want. Your expert travel agent will curate it around you. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
4: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
5: स्लो मूविंग ट्रैफिक स्टिल ऑन शिगजैग, बट अब 2 घंटे का नहीं, 1 घंटे का और 10 मिनट का डिले है। 1 hour 10 minute फिलहाल हैवी ट्रैफिक का मरीना से JBR ऑल द वे, आपको 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। देयर इज ऑल्सो ट्रैफिक इफ यू टेकिंग आला साइल टुवर्ड्स डिस्कवरी एंड गोइंग फर्दर टुवर्ड्स फरजान। पैची बट स्लो मूविंग ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद। फर्स्ट अल खेल अगेन, इट इज बहुत ही स्लो मूविंग। अगर आप अल नसीम स्ट्रीट पे हैं, फर्स्ट अल खेल की तरफ बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है। इसके अलावा आई डोंट सी एनी ट्रैफिक, कहीं आप अटके हो तो मुझे बताओ 800-1062 पर।
1: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: Big 106.2. Big.

0: ऑफ सूरज बरजातिया एंड हिज मूवीज, चाहे वो मैंने प्यार किया हो, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं, कौन विवाह, तो मेरा गिल्टी प्लेजर है. एंड नाउ ही इज बैक आफ्टर अ रियल लॉन्ग टाइम विद ये प्रेम मोलिया स्टारिंग आयुष्मान खुराना एंड शर्वरी.
1: द बिग थ्रिल विद नॉन्सी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Filal selfdrive.ae is back with some fantastic deals. You can now lease a brand new SUV from Jator and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month. This is for a 12-month lease. Do get in touch with them and do not miss these fantastic deals. Aaj hi visit kijiye selfdrive.ae. Terms and conditions do apply.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: That was a fast track song of the hour. And फिलहाल अगर आप भी travel करना चाहते हैं with Team Big तो fast track करना होगा. WhatsApp करने का process if you've not WhatsApped yet. अगर आपने register नहीं किया है, the last 5 minutes for you. Big check in अपना नाम WhatsApp करना है to 0543091062. नेहा कक्कड़ की आवाज right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम? नाम
2: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: 105.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: हे hey.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. What an exciting and thrilling Tuesday for Shivani, our very first finalist who's flying with Team Vic to Germany. In fact, you still have a chance. Agar yahan number nahi lag raha hai, Instagram ke through try karo. 106.2 Big FM. That's us on Insta. Filhal, if you love reality TV as much as I do, in fact, kuch mahino pehle maine ek research bhi aapko batai thi, jo log emotionally bahut strong hote hain, wo reality TV dekhte hain, jo zindagi mein bahut shant hote hain, unhein reality shows bahut achhe lagte hain, kyunki wo apna jo hai सारा गुस्सा लोगों के सामने नहीं निकाल पाते, तो वो दूसरों को ये करते देख खुश हो जाते हैं. फिलहाल रियलिटी टीवी की बात है तो आई वॉज हुक्ड टू लॉक अप एंड नाउ एकता कपूर राइट नाउ हैज अनाउंस्ड सीजन 2. ऑफकोर्स दो टीम्स थी, शिल्पा शिंदे श्रेया कालरा की टीम एंड दूसरी तरफ शिवांगी जोशी की टीम. आई वॉज ऑफकोर्स सपोर्टिंग शिल्पा एंड श्रेया. सो इफ यू आर इनटू रियलिटी टीवी, यू आर इन फॉर अ ट्रीट. मोर ऑन द नेक्स्ट सीजन ऑफ लॉक अप वेरी वेरी सून. फिलहाल किक स्टारिंग दिस आर विद

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
3: 34 degrees है, लू जाएगा राम 31. फिलहाल ह्यूमिडिटी है 57% पर.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Europe? Asia? Somewhere exotic? I've found unbeatable deals around the world. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Filal, if you get very excited when I talk about reality shows, reality TV, of course, Big Boss is going on. I stopped watching Big Boss. I think the last season I saw was Shahnaz Gill wala. Uske baad maine Big Boss dekha nahi hai. But I love reality TV. And Lock Up, maine abhi abhi dekha tha. 2 mahine pehle, I think, finale hua hai show ka. Now they are coming up with season 2. Ekta Kapoor just announced on Instagram. I am so looking forward to season 2. I had so much fun. I was so into the previous season of the show. Matlab, maine reels bana di thi. Main itni zyada उस शो के अंदर इन्वॉल्व हो गई थी. शो जो है वो दो हिस्सों में, दो गैंग्स में डिवाइडेड था. एक थी टीम श्रेया एंड शिल्पा, दूसरी थी टीम शिवांगी. ऑफ कोर्स आई वाज टीम श्रेया एंड शिल्पा. कांट वेट फॉर सीजन 2. आई होप दे ब्रिंग शिल्पा शिंदे एंड श्रेया कालरा बैक एक और बारी ऑन नेटफ्लिक्स विद लॉकअप का सीजन 2. फॉर व्हाटएवर द फन, द मस्ती, द फ्रेंडशिप, द बॉन्ड दे शेयर्ड, आई'd लाइक टू सी देम अगेन. एंड ऑफ कोर्स दे प्लेड अ ग्रेट गेम. Also, I want Farah Khan and Ritesh Deshmukh to host this show again. They are amazing as hosts. Aaj se pehle mujhe lagta tha ki nobody can beat Bhai Jaan. Still, I feel that nobody can beat Bhai Jaan. But haan, Farah and Ritesh Deshmukh, dono bahut fun hai when it comes to hosting these reality shows. So, Ekta Kapoor has just announced. कौन सा वो सेलिब्रिटी है जिसे आप लॉकअप में देखना चाहोगे? राम कपूर ऑफ कोर्स वाज देयर प्रीवियस सीजन में. मैं पहले फैन थी, बट लॉकअप देखने के बाद मैं राम कपूर की फैन नहीं रही. कौन सा वो सेलिब्रिटी जिसे आप देखना चाहोगे इन लॉकअप? यू कैन डेफिनेटली लीव इन योर कमेंट्स. देयर इज अ स्टोरी दैट आई हैव पुट ऑन इंस्टाग्राम 106.2 बिग एफएम. इट इज फिलहाल ओजीस को ये गाना याद होगा. Instagram पे suddenly ये गाना वापस आ चुका है. Let me see how many of you remember this song. And if you're in the car right now and you're listening to this and reminds you of the OG times, if this song reminds you of Sajjad Ali, you have to put a story and tag me and 106.2 Big FM. Bring it up.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: शिवानी को तो 100% आज रात नींद नहीं आने वाली है. वेरी फर्स्ट फाइनलिस्ट फॉर द चेक इन टू जर्मनी.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Khora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: Yes, we announced the very first finalist. Ek seat to ja chuki hai. And we'll also be announcing more finalists. So, अगर आप चाहते हैं कि इस फ्लाइट में आपकी सीट भी बुक हो जाए, पहले शॉर्टलिस्ट होना जरूरी है. If you've not sent us a WhatsApp yet, please do it. And if you're wondering कि यार मैंने तो आज तक स्क्रैच कार्ड में कुछ नहीं जीता है, you never know, universe works in mysterious ways. So make sure you register, you send that WhatsApp big check-in, your name to 0543091062. अगर आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, मेक श्योर यू कीप योर फोन्स क्लोज टुमारो मॉर्निंग. इट इज गोना अनाउंस द सेकंड फाइनलिस्ट फॉर द बिग चेक इन टू जर्मनी. फिलहाल यहां पे नंबर नहीं लग पा रहा है तो इंस्टाग्राम तो है ही, 106.2 बिग एफएम, दैट्स अस ऑन इंस्टाग्राम. डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट. हु नोज, आपका एक कमेंट आपको जर्मनी ले जाए.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Khora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Big 106.2.

0: With Nancy on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: And it's just that time for me now to say goodbye, good night. I'll see you tomorrow, Wednesday. Se meri khushiyan jo hai wo wapis aa jati hai, aapki bhi aati hongi, kyunki aapko pata hai ki weekend aane wala hai, you know. मंडे से फ्राइडे बहुत दूर लगता है, वेंसडे से लगता है बस यही है. सो या ऑलमोस्ट देयर. फिलहाल डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स. इफ यू नॉट डूइंग दैट, यू मिसिंग आउट ऑन सो मच फन. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप इंस्टाग्राम के थ्रू जीत सकते हो, फ्रॉम मूवी टिकट्स टू कॉन्सर्ट इनवाइट्स टू ऑफकोर्स अ ट्रिप टू जर्मनी. सो 106.2 बिग एफएम, दैट इज अस ऑन इंस्टाग्राम. यू कैन से हाय टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग, एंड आई टॉक टू यू एवरी सिंगल डे 5 to 9. अब मैं आपसे मिलूंगी कल अप नेक्स्ट विद अ बिग चिल, वेरी रोमांटिक, वेरी लॉन्ग ड्राइव, very smooth music after a long tiring day. The perfect way to unwind is with the big chill. So yeah, if you're out and about, you're in for a treat. Mam se milti hu kal. Good night.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: CreditMarkets.ae. You know me from InsuranceMarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. CreditMarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: One big ticket brings many chances to win.
5: A guarantee 20 million dirham grand prize.
4: And 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
5: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
7: आराम से रहने का ठंडा पानी पीने

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Listen to her every day.
1: Mugambo! Khush hua!
2: Sachi, there's so much pressure on you, Sachi. You always have to be honest.
3: Yeah, true.
2: बहुत प्रेशर वाली जिंदगी होगी, तो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलती होगी साची।
3: डर लगता है।
2: बिल्कुल। फिलहाल थ्री थिंग्स दैट यू डू बिफोर यू गो टू बेड।
3: आई स्टैंड अप। अरे आई बेड।
2: टाइम खत्म, फटाफट साची, यू हैव टू बी क्विक आल्सो।
3: ओके,
2: नेम थ्री थिंग्स दैट आर रेड।
3: रोज एंड केसर।
2: राइस, ओके। केसर कौन सा लाल केसर है यार? तो सैफरन इज ऑरेंज, इट्स अ कलर।
3: नो, द एडिबल सैफरन व्हिच यू पुट इन योर खीर।
2: आई नो, बट इट्स कॉल्ड सैफरन बिकॉज इट्स सैफरन कलर। ओके, तीन गाने जिनमें दिल आता है।
3: दिल ही तो है
2: और
3: दिल का क्या स्पोर्ट।
2: Ayo, time khatam.
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. No rush. No noise. Just soul-soothing music on a moonlit ride. This is The Big Chill on Big 106.2. The beat of Bollywood.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: Thank you.
1: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
1: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: and Night Feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा क्योंकि होमवर्क भी मेरा रिसर्च भी मेरी बट प्लान होगा आपका फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.